बिल्कुल जनाब दिन लवाजी वो कॉस्ट गुलाबी फम की अलशिफा दवाहाना शवाल मरकिन रंग शखस जंग दवाहाने दे जी हकीम से पके नास भी अत बदल शी हकीम से तो गुरा नाजमान भाई वाला प्रोडक्ट मिश्तरो के शादो से दिन लवाजी दे मुझ प्रोडक्ट मिलावे शी कम से के जनाब नूर मार्केट की सेहत होम यू मेडिकल अस्पताल के डॉक्टर से मनोज फिखा हर हौसल ऐसे दिन लवासी फैमिली शॉपिंग सेंटर से मिले विश जनाब मकम से कैसे पीर साबिर शाह बाबा बाजार से उमर अड़े की जंजीब भाई सरा डबर के इब्राहिम गुल रजा से मिला विश वीर सरा विसर चिन्नूर खान से पीर साहब खादर मार्केट से हदीम प्रोडक्ट से मिला विश دین لواز جناب بڑبر شیش اتار روڈ باندھے بختی رحمان ایڈ زیور رحمان سے سرحدی مش پروڈکٹ سے ملاوی شیخ فرید اللہ پیسے بن روڈ باندھے بلال مارکیٹ کی ملاوی شیخ خان سے

भाई ऐसा ना, ऐसा हो नहीं सकता है कि आपका शो हो और हम सो जाए भाई मोहल्ला मुसीदान में आवाज हो के जाम बना लो के टेंशन शैम्पू यूज करो जबरदस्त रिजल्ट फरी रहमान बिजली प्रोग्राम लिंक बने और टाइम चेंज करेगा जुंद मजा निश्ता जाना न दर्द सो है जुंद मजा निश्ता जाना न दर्द सो है हेर मनस अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हो वेलकम टू द नो टेंशन एंड ब्यूटीफुल शो आपको स्टिल सलाम सबसे रुको सलाम नो टेंशन चेन टाइम बहुत बहुत मुबारक है शाह से मन देर मन ना नाजमीन ने जबरदस्त बातें रोजाना हमारे माशाल्लाह हमारी नोटेंशन कंपनी तो आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे आगे बढ़ते जा रही है अल्लाह पाक हमेशा के लिए आपको और नोटेंशन कंपनी को कामयाबियां नसीब था फरमाए हैं नवकार अमीन सी बेजान हो रही अपी थे आया ची ऋषि रोता बाकी का मजूरी छे बेजान अदम रशी ठीक से लसम जोर वर के भाई नन खुसम बलशान रतलेगी अगनोरे वृति मिशपत यारे के और भी नन पलमरे के वरी के सन सिडर बलशान ने रतलेगी खुश भाई रात संग लगे से तो हां ब्याह ती यारे का वो सती यारे के हां स्टूडियो दस मोम द सेम कंडीशन है हां भाई जान नो टेंशन नो प्रोडक्ट से मनावो बटे मसी फेस वॉश बस बार उड़ा टोल खेंद ता सलाम ने ओके से तो द टाइम इज ओवर द अवरदन को प्रोग्राम ता स्पोंसर को जनाब और नोटेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान नोटेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोग्राम चिकन तो शावर जी रेगुलर वजम के तासो मार करते कि जनाब द सुबह जुन वखला दर तादी दादी द खैर असर दुन वखला तर दर पर खास हम खत्म शो छी पर रोर खुल बेजान नजवान तवर की इजाजत दलो इलाफमान बाय बाय टाटा एंड लव यू ऑल थैंक यू खामोश सर दलो इलाफमान और बकेट टाइम पर खैर

अस्सलाम वालेकुम कस्टमर्स, केसम ताकत प्लस वाकई ताकत से भरपूर फार्मूला है जो जिसकी कमजोरी और सुस्ती को खत्म करता है। केसम ताकत प्लस हसीब जनरल स्टोर रंगपुर अड्डा पर रियायती रेट पर दस्तयाब है, आज ही तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम कस्टमर्स, केसम ताकत प्लस ताकत का खजाना अवैस ट्रेडर्स पहाड़पुर में रियायती रेट पर दस्तयाब है। अस्सलाम वालेकुम कस्टमर्स, वजन कम करना हो या वजन बढ़ाना, तशरीफ लाएं भट्टी शॉपिंग सेंटर छोटा बाजार, क्योंकि भट्टी शॉपिंग सेंटर पर केसन के नेचुरल प्रोडक्ट्स में आपके मसाइल का हल है जो यहाँ दस्तयाब हैं। अस्सलाम वालेकुम कस्टमर्स, मैं कारी तहसीन तुराबी, अब कमजोरी को कहीं अलविदा केसन ताकत प्लस के साथ। केसन ताकत प्लस समेत केसन के तमाम प्रोडक्ट्स हाजी जरी एंड जनरल स्टोर जफराबाद में दस्तयाब हैं। अस्सलाम वालेकुम कस्टमर्स, केसन ताकत प्लस ताकत का खजाना उमर जनरल स्टोर शेख यूसुफ दरबार वाली गली में भी दस्तयाब है।

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Radio Pagam 97.4 Paharpur, Global FM 91 Dear Asmal Khan and Radio Aman 88.4 Tank. जनाब तीन रेडियो स्टेशन और एक आवाज़, और ये आवाज़ है किसकी? ये आवाज़ है जनाब खलील दाबे शमान, ये आवाज़ है केसन की, ये आवाज़ है शिफा की, ये आवाज़ है तंदुरुस्ती की, और ये आवाज़ है हुस्न और खूबसूरती की। जनाब केसन नेशनल पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में कि जिसका नाम है केसन टी टाइम, सभी लोगों को तमाम जो जो हमें जहाँ जहाँ सुन रहा है, तमाम गर्ल्स एंड बॉयज, अंकल एंड आंटीज, चाचा चाची, मामे एंड मामी, दादा एंड दादी, जान नाने नानी, सबको, सभी सुनने वालों को खलील ताबे शाहवान के सलाम, ढेर सारी मोहब्बतें, ढेर सारी नेक तमन्नाएं और ढेर सारी दुआएं आप सभी के नाम। जी तो जनाब कैसे आप सभी लोग? जनाब उम्मीद यही करता हूँ कि जिस तरह मैं बिल्कुल जी फाइन निशान, चमकता हुआ, दमकता हुआ, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ, चहचहाता हुआ, जनाब बिल्कुल जी फिट एंड फाट एंड फाइन एंड शाइन हूँ, मेरे तमाम जाने वाले, तमाम फ्रेंड्स, तमाम के यूज, तमाम लिसनर, तमाम यूजर बिल्कुल जी दरियत आफियत के साथ होंगे जनाब, और हमारे शो का जिसके नाम है किस एंड टाइम, उसके इंतजार कर रहे होंगे जनाब। आपका इंतजार खत्म हुआ जाता है और आगे वाला एक घंटा हम एक साथ रहने वाले हैं। तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए जिसके ऊपर आप लोग हमें कॉल करेंगे, SMS करेंगे और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएंगे। तो जनाब हमारा नंबर 0344-936-3366 0344-936-3366। जनाब आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम लेकर हाजिर आते हैं हर रोज, और कुछ न कुछ छुपा होता है इस प्रोग्राम के अंदर, कोई मैसेज छुपा होता है आप लोगों के लिए, कोई बातें छुपी होती हैं जो आपको बतानी बहुत जरूरी होती हैं, बहुत सारी बातें आपको बतानी बहुत जरूरी होती है, और कुछ बातों को ना सिर्फ आप सुना करें बल्कि उसको अपने दिल के अंदर, अपने जहन के अंदर जगह भी दिया करें। एक वाकया में पढ़ रहा था, सुफियान सूरी एक बहुत ही पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं रहमतुल्लाह अलैह, तो उनके हवाले से एक मैं वाकया पढ़ रहा था, मेरे तो दिल को जाके लगा और मैंने कहा आप लोगों से, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं कहीं पर भी कोई अच्छी चीज पढ़ लेता हूँ, देख लेता हूँ तो अपने मोबाइल में सेव कर लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसको आपके साथ आके शेयर करूँ। मुझे सुनने वाले तीन अजला होते हैं, डेरा टांग एंड पाटपुर एक साथ, तो जनाब एक बात अगर तीनों शहरों के लोगों को तक पहुँच जाए तो क्या ही फायदे की बात है, और कोई एक भी अमल कर ले तो भाई हमारी निजात का सबब बन सकता है। तो जनाब कहते हैं कि सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो कहते हैं कि मुझे एक गुनाह की वजह से 5 महीने तक तहज्जुद की तौफीक नहीं हुई। तहज्जुद गुजार थे, बुजुर्ग थे, लेकिन कहते हैं कि मुझे एक गुनाह की वजह से अल्लाह ताला ने मुझसे तहज्जुद की नमाज छीन ली, कयामुल लैल में से मैं महरूम हो गया। तो उनसे किसी ने पूछा, हजरत वो क्या था, वो क्या गुनाह था, हमने तो आपके अंदर ऐसा कोई गुनाह नहीं देखा, आप तो एक नेक शरीफ इंसान हैं, हमने तो नहीं देखा कि आप कभी कोई गुनाह करते हैं, क्या आपसे भी गुनाह सरजद होते हैं, तो वो ऐसा क्या गुनाह था कि 5 माह तक अल्लाह ताला ने आपको महरूम कर दिया तहज्जुद से। तो कहते हैं कि जनाब एक दफा ऐसा हुआ कि मैंने किसी को रोता हुआ देखा, वो रो रहा था और रोते हुए देखकर मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये तो दिखावा कर रहा है, ये तो रियाकारी कर रहा, यानी कि ये बात सिर्फ मेरे जहन में आई, हालांकि वो सच्चे दिल से रो रहा होगा, किसी गम से, किसी परेशानी में, कोई दिखावा नहीं था, लेकिन मेरे दिल में आया कि यार ये तो मुझे लग रहा है रियाकारी कर रहा है। ऐसा कई दफा होता है ना, हमारे पास कोई साइल आता है, कोई चीज मांगने वाला फकीर आता है, और वो भी जब कहता है कि भाई अल्लाह के नाम पर दो, तो हम दिल में कहते हैं यार देखो हट्टा कट्टा सा है यार, है जी एक नौकरी मजदूरी करे कोई, है जी ना, अब ये क्या कर रहा है यार। बाज़ुकात कुछ चीजें रियाकारी नहीं होती हैं, लेकिन अगर हम ऐसा सोच लें कि रियाकारी हो रही है तो भाई गए काम से आप, है जी ना, और इस चीज को हम कुछ समझते ही नहीं हैं, और कितनी दफा हम ये कह देते हैं, कोई खैरात कर रहा है, कोई नेकी का काम कर रहा है, कोई किसी गरीब की मदद कर रहा है, ठीक है जनाब, कोई तबलीग में लगा हुआ है, कोई अपनी दावत इस्लामी में लगा हुआ है, कोई किसी भी काम में लगा हुआ है, हम अक्सर ये ताना देते हैं रियाकारी करता है, ये दिखावा है इसका यार, है जनाब ये दिखावा है इसका, दाढ़ी रखी हुई तो यार। अब अल्लाह के अलावा कोई किसी के दिल का हाल नहीं जानता, लेकिन इस चीज को समझना जरूरी है कि जब आप किसी के बारे में गलत गुमान भी करते हैं तो अल्लाह कितने नाराज होते हैं,
जब आप एक चीज तो आपको पता ही नहीं है और उसके बारे में आप अपनी राय कायम कर लेते हैं तो वो कितनी बुरी बात है। और देखिए कि एक इतने बड़े जय्यद बुजुर्ग, ठीक है जनाब, वो कह रहे हैं कि भाई मुझसे अल्लाह नाराज हो गया और मुझसे 5 माह तक मैं नमाज के लिए नहीं उठ सका। वजह क्या थी? एक बंदा जो दिल से रो रहा था, मेरे दिल में ख्याल आया कि रियाकारी कर रहा है। तो भाई बहुत सारे मुश्किलात हमारी जिंदगियों में हमारे गुनाहों की वजह से आती है मोस्टली, ठीक है जनाब। तो अस्तगफार करना चाहिए और ऐसी बातों से जहां पर आप दूसरों को कमतर समझे, भाई ये गुनाह के जुमरे में आता है और इसके ऊपर बड़ी बड़ी सख्त है। आप खुद नेक जरूर बने लेकिन बुरों को दूसरों को बुरा हरगिज ना कहें।

0: आपको खाना खाने के बाद सीने के अंदर जलन होती है, आपको भूख नहीं लगती है, जल के साथ साथ आपको गैस के मामलात हैं, या फिर आपके पेट में कभी कभी दर्द होता है, या फिर आपको बदहजमी का शायबा रहता है, तो जनाब के सन हाजमा कंट्रोल सिर्फ को 150 रुपए का है, दिन में 2 से 3 मरतबा इसको 2-2 चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जनाब ये तो है हमारे सेहत के प्रोडक्ट, इसके साथ साथ आप हमारी प्रोडक्ट में से जनाब व्हाइटनिंग के लिए ग्लूटा व्हाइट क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं जनाब, साथ में हमारी जो है नाइट क्रीम भी है, दो तरह की क्रीमें हैं, और हम कहते हैं कि जो बड़ी उम्र की खवातीन हैं, जो शादी शुदा है जनाब, तो वो जफरानी क्रीम का इस्तेमाल करें, क्योंकि उनकी छाइयां बहुत गहरी होती हैं और वो बहुत सारी क्रीमें लगा भी चुकी होती हैं। दूसरी क्रीम हमारी ग्लूटा व्हाइट की क्रीम है, जो कि यंगर्स के लिए है, जो कि टीन एजेस के लिए है, टीन एज की जो खवातीन लड़कियां हैं उनके लिए है, कि जनाब उनकी स्किन बहुत ही जनाब जो है नाजुक सी होती है, मासूम सी होती है, तो एक मासूम सी क्रीम हमने आप लोगों के लिए बनाई है, जो कि कम उम्र के लोगों के लिए है, और इसके नाम है केसन ग्लूटा व्हाइट, जो कि 350 रुपए को मिलती है। लेकिन आपने कीमत के ऊपर नहीं जाना, ये मत कहिएगा कि बाजार में तो क्रीमें 300 की मिल रही है, 250 की मिल रही है, भाई 350 रुपए की है, लेकिन ये 30 ग्राम की क्रीम है तो आपकी 15 से 20 दिन चलेगी। इसके साथ साथ आप हमारे फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमारा लवली फेस वॉश है, जो कि गोरा बनाने के लिए है, इसके अलावा फेस वॉश है, इसके अलावा चारकोल एंड गो पिंपल दानों को खत्म करने वाला फेस वॉश। थक जाते हैं, हमें पानी पीना पड़ता है, आपको केसन के प्रोडक्ट की लिस्ट बताते हुए, क्योंकि इतने ढेर सारे प्रोडक्ट हमने आप लोगों के लिए तैयार कर लिए हैं। साबुन बाकमाल किस्म के हैं, जाफरानी के क्या कहने हैं, मिल्की साबुन के क्या कहने हैं जनाब, मिल्की और जाफरानी डेरा टांक और पहाड़पुर में छाए हुए हैं, बिल्कुल जनाब छाए हुए हैं, क्योंकि जनाब ऐसे ऐसे साबुन आपने कभी इस्तेमाल ही नहीं किए थे, कभी इस्तेमाल ही आपने नहीं किए थे, जो साबुन इस बार आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है आप लोगों को नेचुरल ऑर्गेनिक हैंडक्राफ्टेड सोप मिल रहा है, जो कि जनाब आपकी स्किन को नरिश करते हैं, आपकी स्किन की खुश्की को खत्म करते हैं, बाजार में बिकने वाले साबुन आपकी स्किन को बिल्कुल खुश कर देते हैं, और खुश होने के बाद आपकी स्किन फटने लगती है। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि जनाब आगे सर्दियां आ रही है, मौसम चेंज होने लगा है, तो साबुन से चेहरा धोने के बाद उनकी स्किन बिल्कुल रफ सी हो जाती है। आप केसन के साबुन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये कोकोनट ऑयल और ग्लिसरीन से बने हुए हैं, बिल्कुल आपका चेहरा खुश्क नहीं होगा, ड्राई नहीं होगा, क्रैक्स नहीं पड़ेंगे आपके चेहरे के ऊपर, क्योंकि ग्लिसरीन और कोकोनट आपकी स्किन को हाइड्रेट रखते हैं, मॉइस्चराइज रखते हैं। साबन की क्या कीमत है, जाफरानी साबन और ग्लूटा व्हाइट के साबन 250 रुपए के है, जबकि दूसरे साबन जैसे कि गो पिंपल साबन है, जैसे कि मिल्की साबन है, जैसे कि कोजिक एसिड साबन है, जैसे कि उपटन साबन है, जैसे कि राइस शाइन है, ये सारे आपको 200 रुपए में मिलते हैं। जी जनाब आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं हमें 03449363636 और 0349436343 और काम के प्रोडक्ट तो मैं बताना भूल गया, केसन का ऑयल और केसन का शैम्पू। इस वक्त देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अजी मुझे सुनानी है अपनी बातें।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम कौन है हमारे साथ, नाम बताएंगे अपना। मोहम्मद अहसान खादिम फरूकी गिरसल जब्बार आले कुसर नाम मौजूद इन सही की हाल है, ठीक ठाक ही वे।
1: सब ठीक है
0: शुक्र अल्लाह का। प्रोग्राम सुनते पाए वे सही?
1: सुनते पाए
0: जी जी। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, जिन टाइम तारे को मिल वजे सही, जरूरी तो नहीं होना के बहरहाल प्रोग्राम सुनते पे वे थे माशाला। केसन की खरीदारी भी शुरू है तुम्हारे को?
1: बिल्कुल शुरू है काम लगा।
0: अच्छा लोग मुतमईन हैं तो को गिले तो नहीं देंगे, कोई तो नहीं करेंगे कि तेरी कंपनी गिना है अपने को?
1: तारीफा
0: हां जी, तारीफा ही तारीफा। केसन देसो तो अपने भी तारीफा सुनसो, तो केसन दे भी तारीफा सुनसो, तो वधी गाल है कि उन्हां दी तारीफा दिसन जिरे केसन को इस्तेमाल करे से तारीफ करेंगे। तुम्हारे को सबसे मौजूद होंगे सारे ऑयल शैम्पू ऑयल वगैरह भी लोग गिंदे रहने तुम्हारे को केसन का?
1: बिल्कुल ऑयल गिंदे पैन साबन गिंदे पैन शैम्पू नहीं मिली
0: शैम्पू है कोनो शैम्पू तो सही सारे को पूरा नहीं थी ना बहरहाल हूं इंशाल्लाह सबको पूरा करके दिखे सो हूं तुम्हारा सारा मुकाबला पहले था लिसनर साडे को जीत गए कि सबको शैम्पू पूरा नहीं करा देने पे ठीक है सर लेकिन हूं अस अपनी कोशिश करने पे इंशाल्लाह वही कोशिश है कि शैम्पू हूं बुला के कदम शार्ट न थे इंशाल्लाह ना ला दे पे लेकिन इन सेल हर महीने वी पई है तो सबको अंदाजा नहीं थी यानी वजह को हर महीने شارٹ کر کھڑے ہیں دو چار دیاں واسطے ہوئے ہفتے کو شارٹ ہے لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ ہفتے لیا ویسی تے سارے لوگوں کو جے کو جتنی ڈیمانڈ ہے ساروں کو انشاءاللہ پوری ڈیمانڈ کے مطابق پہلی دفعہ سا ڈیمانڈ کے مطابق لوگوں کو جیں دو کارٹن ہیں جیں تری کارٹن ہیں جیں چار کارٹن ہیں پورا دا پورا پرووائڈ کرے سوں انشاءاللہ جی اوکے جناب خالد بھائی جو ہے خالد سان فروخی ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ گرسل میں ان کا سیل پوائنٹ ہے اور میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو 4:30 کے اندر ہوتا ہے نا یہ ٹانک والے لوگ ہمیں کال کیا کریں ٹھیک ہے جناب کیونکہ آپ لوگوں کے لیے ٹائم بچا پڑا ہوتا ہے بہت سارا ہوتا ہے آدھا گھنٹہ ڈیرا والوں کے لیے اور پہاڑ پور والوں کے لیے تو کون ہے ہمارے ساتھ جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: چاچا فتح خان 91 کو سن لے پہلے سے ہر جہاں پہنچی ودی ترقی پہنچی ودی گھر ہی بیٹھے ہوا ڈیری دے وچ تے چاچا تارے تک راجا غفور دی رسائی تھئی ہے کہ نہیں تھئی ہے پہلے دسو ٹھیک ٹھاک میں کوئی پیغام کوئی میسج سارے نا سی چلو ٹھیک ہے جی آواز ٹائم کم ہے اور کوشش کیا کریں کہ آپ آدھے گھنٹے کے اندر ٹانک والوں کو موقع دیا کریں تاکہ ٹانک والوں کی ہم باتیں سن سکیں ان شودوں کے پاس ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے تو یہ 7-8 منٹ جو ہے کوشش کریں ٹانک والے بھائی کال کریں 03-44 آپ کو کوئی گلا ہے مجھ سے کیونکہ میں آپ لوگوں کے پاس صرف 3 دن آتا ہوں 4 دن ہمارے آپ کے اپنے آرجے ہوتے ہیں اپن کے پاس تو بھائی کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو ضرور ہمیں آ کے بتائیے گا جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جناب چودھری انکل آ چکے ہیں ہمارے ساتھ چودھری عارف کیا حال ہیں جناب ٹھیک ہیں
1: اللہ کا احسان ہے خلیل بھائی تم سناؤ
0: مجھے یہ بتاؤ مسئلہ حل ہوا گفٹ والا کہ نہیں ہوا ابھی تک
1: مسئلہ حل ہو گیا بھائی سے
0: ہمیں تو ٹینشن میں ڈال دیا ہم نے کہا یار یہ اس طرح
1: یار وہ کہتے ہیں نا سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کی پھولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے
0: ہاں بالکل ویسے اس شعر کا یہاں پر کوئی تعلق بنتا ہے
1: یار بنتا ہے اس لیے نا حلال ہو یا جو چیز دل سے مل جائے وہ کبھی غائب ہو سکتی ہے
0: اچھا چلو ٹھیک ہے ہم سے ہم نے محبت سے بھیجی تو مل گئی ماشاء اللہ جی ہانیہ امی ہانیہ کو دے دی پھر آپ نے گفٹ
1: امی ہانیہ کو دے دی میں نے امی ہانیہ اسی ٹائم پہ میں نے دے دی
0: چلو اچھا خوش ہے پھر وہ چاچو سے نانا سے دونوں سے
1: بات کرو
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام کاکی کیا حال ہے ٹھیک ہو پروگرام سن رہی ہو گفٹ مل گیا ہے کیسن والا
3: ہاں
0: کون سے پیلے بیگ میں تھا یا ایسے شاپر میں تھا پہلے یہ بتاؤ
3: شاپر میں تھا
0: کون سے شاپر تھا
3: یلو کلر کا
0: شاپر تھا پھر ٹھیک ہے پھر یعنی کہ پھر ہماری چیز مکمل طور پر آپ تک پہنچی ہے تو آپ نے کچھ استعمال کیا اس میں سے اپنے لیے یا مما کو دے دیا سارا مما کو دے دیا یا خود بھی کوئی چیز استعمال کی ہے
3: ایک چیز
0: کیا
3: دو پرفیوم کی بوتل لی تھی
0: اچھا تو پرفیوم استعمال کیا آپ نے یا مما نے استعمال کیا نانا نے استعمال کیا
3: نانو
0: نے استعمال کیا ہے
3: نانو
0: اچھا نانو تو خوشبو آپ کو اچھی لگی یا خوشبو اچھی نہیں لگتی آپ کو
3: بہت اچھی
0: اچھا بہت اچھی چلو ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے ہمارا پروگرام یوں ہی سنتی رہو اور آئل بھی لگایا کرو کیسن کا بالوں میں تاکہ تم جب بڑی ہو تو تمہارے بہت پیارے پیارے بال ہوں
1: بڑی بڑی مہربانی خلیل بھائی اللہ آپ
4: न्यूज मिले यकीन कर फूल की तरह मुस्कुराते रखे और अल्लाह पाक आपके रिश्त में बरकत डाले भाई मेरे।
0: आमीन आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच जनाब हमारे साथ आरिफ अंकल। और इन्होंने बारह बिलबुल को गिफ्ट विन किया था तो इनको भी पहुंच गया है। सो वो जनाब टांक वाले किधर हैं भाई? टांक वालों को मौका नहीं देंगे पाड़पुर वाले। मुझे लग रहा है कि पाड़पुर वाले भाई डाडे हो जाते हैं टांक वालों को। टांक वालों मजा नहीं है तुम्हारा यार, बिल्कुल भी मजा नहीं है तुम्हारे ऊपर, डाडे हो जाते हैं ये पाड़पुर वाले। जी अस्सलाम वालेकुम, एक और पाड़पुरी हमारे साथ हैं जी। एफ एम तो सही पाड़पुर तो सुनते पे ना आकर मकसद है गर्मी थे गर्मी बिल्कुल गर्मी तो है ना मत गर्मी कुछ तो एक दफा गर्मी को मौका देना चाहिए ताकि गर्मी भी याद रहे कि भाई आई आई ना सही हर वेले जो ऐसी चल रहा था
5: इतना महसूस नहीं किया जरा ये महीना जरा बड़ा महसूस किया।
0: एक दफा गर्मिया कोनिया यकीन करो जून तक गर्मी कोनी आवे। जून तक मई वाला महीने ठंडा गुजरे अद्धा जून भी ठंडा सिर्फ सावन औखा कर गया वे बाकी गर्मिया एक दफा कोनी आवे
5: बिल्कुल कोनी बिल्कुल लेकिन ये महीना भद्र वाला बड़ा सख्त है।
0: हाँ शाम तो बाद मौसम चंगा थी वेंदा लेकिन डींकू चलो सही की बस तुम्हारे को सर केसन चलती पई है ठीक ठाक है लोग गिंदे पहनते फायदा गिंदे पहन के ना सिर्फ पैसे लांदे वे दिन
5: माशाल्लाह ठीक ठाक चलती पई है।
0: अच्छा जी
5: अल्लाह के हुक्म नाल ठीक ठाक रिजल्ट आंदा तू माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आंदा तू
0: आखरी काल तुम्हारी ऐसे गिंदे पे हैं ते टांकलां को सासु अल्लाह हाफिज तू समय को ये दसो टांकलां को एक दफा दसी वनो कि ओ केसन दा तेल गिनेन या न गिनेन सिर ते लावणा
5: इंशाल्लाह तेल घिनेन बिल्कुल तेल घिन के अजमामेन कोई पत्थर का दाग में से पुराने छाट लगी हुए आराम नाम ना पी होंगे
0: और सिर वाला तेल वाला वाला तेल वाला वाला तेल।
5: हाँ तो वाला वास्ते तो अगर दें तो वाल ढां देता है तो इंशाल्लाह वाल भी रखता है।
0: अच्छा
5: वाल देने दो मिनट नहीं थी तो दस ये तीन मिनट बीस मिनट और फिर दस मिनट लेने वाले बना देने काला कलर हम कारवाई में।
0: हाँ
5: तो अच्छा तो ये पैगाम ले सकते अगर खैर तो जो आप पता ना पूछ लेता उस तीन इंच शफायदार अगर कहीं कहें वाला का मस लेता वो अपना वाला का शैम्पू भी नाल इस्तेमाल करें इतना बड़ा मजा रिजल्ट करे।
0: हाँ शैम्पू यानी कि तेल इस्तेमाल करे से नाल उनके बाद शैम्पू कैसे नाल वाल धो से तो वाल वाला क्या ही बात हो सी ऐसे ही
5: ना ताड़ी नहीं बगती
0: दू दू होता ना ताड़ी हमेशा दू होता ना वैद्य होंगे तो वाला तो खूबसूरती अगर तो चाहिए तो आयल केसन का शैम्पू नाल इस्तेमाल करे
5: शैम्पू बिल्कुल बिल्कुल शैम्पू को इस्तेमाल करो और रिजल्ट देखो तो मजे चाहो मजे चाहो।
0: ठीक है सही बहुत मेहरबानी जनाब बहुत मेहरबानी शुक्रिया जी। राजा गफूर हमारे साथ मौजूद थे पंज ये रईस है और हमने पंजाब में इनको अपना सेल पॉइंट दिया हुआ है और इनके पास बहुत बढ़िया सेल है भाई केसन आयल और शैम्पू भाई। ये जो फार्मूला है ये स्पेशल फार्मूला फॉर हेयर है ठीक है जनाब। ये सिर्फ बालों के लिए है ठीक है जनाब। ये कोई जोड़ों के दर्द के लिए नहीं है ठीक है जनाब। ये कोई किसी और मसले के लिए नहीं है बल्कि ये जो हमने स्पेशल फार्मूला बनाया हुआ है ये सिर्फ बालों के लिए है। बालों के अंदर खूबसूरती लेकर आता है केसन हेयर आयल। हिक भैया सन्नल जनाब कॉलर आ चुके हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम सलाम सर जी के हाल
0: है सेठ की में हाल है सही चंगे वे ठीक ठाक
6: जी तो सर चंगे वे
0: प्रोग्राम सुनते बैठे वे
6: जी प्रोग्राम भी सुनते बैठे हैं चाय पीने बैठे आज
0: का चाय नाल नाल पीने बैठे भाई। चाय तो जिक्र मैं नहीं किया मेरी चाय खत्म थी गई है शो को पहले लगता है खत्म करती है जेडर चाह मैं पीना बैठा हुआ उसका जिक्र बहुत ही ना पी होते चाह का जेडर चाह मैं पहले पी चुनो प्रोग्राम को पता उन्हें बस जिक्र ही नहीं थी फिलहाल तो टांक मिलती पी टांक गरा शहबाज दादे पे या शहबाज खेल शहबाज खेल पेजू लकी इन ते भी बहुत जल्दी लगी वैसी लेकिन फिलहाल इतना ही वधी है टांक दे विच ठीक है टांक वैसे मिल वैसी ताकत प्लस तुस क्या दे ताकत प्लस चंगी शे सुतरे घी को चंगी है